माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

चार साल ने ना किन्ना कु समा पैंदा जी। देखो 1704 दे अखीर विच दसंबर दे महीने विच गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा संस्कार कर ली कोई बाहर निकलन तैयार नहीं ते टेढ़ियां मोहरां विछा के टोडर मल संस्कार पिया करदा है जिथे इन्नी गुलामी कि उहदे पुत्रां दे संस्कार लई थां वी नहीं दित्ती जांदी। समा केवल चार साल दा होर पिया है। 1708 तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर आया, उन्हें सब तो पहला खालसे निशान सरहंद की धरती से चलाया। आपको पता हो वे, देखो कभी असि चलने एक उलारू होके जे चलन लगे गुरु साहब ने कहा मुसलमाना ते भरोसा ना करो। गुरु के सिखो जफरनामे भी तुसी कभी पढ़ो कभी किते कहा हजूर ने कि मुसलमान ते भरोसा ना करो। ये साडे इतिहास विच कई शब्द ऐसे ने कि एक फिरके दे विरुद्ध भड़काया जाए। मैं कहना जे ये कहोगे ते फिर पीर बुद्धू शाह दा की करोगे जिदे दो पुत्र मैदाने जंग विच रहे। तुर लग्या बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कहा सी सरहंद बाद विच अपनी पहला संडौरे की धरती ते जाई। साडा एक यार सी मित्र सी पीर बुद्धू शाह, उहदे टुकड़े करके कुत्तियां नूं मास पाया गया। पहला उस हाकम नूं सोधा जरूर लाया। देखो ते बाबा बंदा सिंह बहादुर आए, उन्हें संडौरा फतेह किया। जो सरहंद की धरती से आए तो इतने इस नीह वाली थां ते केसरी निशान जो झुलदे पए ने ते मैनू अल्लाह यार खां दे शब्द चेते आउंदे ने। बाबा फतेह सिंह की जबान तो उन्हें कढ़ाए सन, कहन लगे हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिखी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। जालम शब्द बरते ने साहब कृपालू जी, मैं अपने विषय पर तुरना चाहना कि शुरू तो यत्न किया जा रहा है कि इनू खत्म किया जाए। खत्म क्यों नहीं होंदे पे, कारण की? हाँ एक जरूर दुख लगता है। देखो कोई तोप लैके आवे बंदूक लैके सामने आवे कोई डर नहीं। किसी भी धर्म नू खत्म करना हो ना, एक तरीका ओदे सामने दुश्मन बन के खत्म ना करो, ओदे कपड़े पा के ओदी बोली बोल के उन्हें खत्म तुसी बड़ी जल्दी कर सकते। बाणा ओदा पाओ, ओदा पोशाक पाओ, उत्ते गात्रा भी पाओ ते गात्रे उत्ते तर्क भी करो, क्योंकि तुहाडा पाया होया गात्रा पर्दे नू ढक जाएगा। ये बंदा है तां पंथक जी, तां ही ते पंथ दी गल पिया करदा। किसी दे भेख नू पा के भेख नू खंडन बड़ी छेती कीता जा सकदा। शायद आप नू पता होवे मैं खिन विचों निकल गया, विशा वैसे होर सी। कुमारल पाठक एक हिंदू बहुत टॉप का विद्वान होया, वो काशी की गली विचों निकलता सी। साडे विच तां पता ही कोई नहीं राजिया महाराजिया नू धर्म दा, उन्हां नू पता ही कोई नहीं। मैं पिछले दिन एक बेनती की, जदों बंदा कहिंदा ना मैं सियासी हाँ, वो शब्द वरते सानू बाणी बूणी का कोई पता नहीं। बूणी शब्द जदों कहिंदे ने ना, मैं कहिंदा इन्हां सियासियां नू पता नहीं कि सरदार जस्सा सिंघालोवालिए ने 19 रागां दा गुलदस्ता दरबार साहिब दे अंदर कायम कीता सी। शब्द वरते सन, मैं पढ़े ने, हुण भाई साहिब नू पता होना भी वह गुलदस्ता किवें बनता है जां किस तरह है। उन्होंने कहने के आप रागां दे बहुत चंगी तरह जाणू सन ते माता सुंदरी जी दे कोल उन्हां दिल्ली कीर्तन सिखिया सी। भाई साहिब भाई जस्सा सिंघालोवालिया हुण जिन्हें सिखे हैं उन्हूं कदी तकियो कि कदर की हुंदी है। मैं कहना कि जिस दी गोदी विच पुत्र नहीं इनू इस विषय वल ना जायो कि जे किसी करबल संतान नहीं। जिन्हें प्रसूत की पीड़ा ही नहीं जरी ओनू पता कि पुत्र की कीमत की हुंदी है। जिन्हें घालना ही नहीं की ओनू पता कि हुंदा गुण की कदर की हुंदी, घालना तो बिना नहीं। हुण देखो साहिब कृपालू जी, मैं बेनती कर रहा वा कि कुमार लपाटक बनारस की गली विचों निकलिया ते एक नरेश की लड़की रोंदी पई सी। कहिंदे ओहदे अथरू कुमार लपाटक दे सिर विच डिगे ते जो डिगे वह बंदा कंब गया। चेते रखो दर्द मंद की आह, दर्द मंद दे अथरू जे एक बार निकल जाण ते कई कूड़ पीढ़ियां का नाश करके चले जाते। उन्हें देखिया भी बच्ची रोंदी पई है, उत्ते गया उन्हूं पुछदा बेटा तेरे रोण का कारण की? कहिंदी मैं देखनी आज सनातन धर्म का, अज वेदिक धर्म का बिल्कुल नाश होने ते आ गया, बुद्ध धर्म का बोलबाला है। उन्हें सिर ते हथ रख के कहा तेरे अथरुआं की कसम जो मर्जी करना पै मैं बुद्ध धर्म दियां जड़ां उखेड़ के रख दिया। गया टैक्सला यूनिवर्सिटी सी उस वेले बोधियां दी उस

0: अब चल नजर सतगुर गए
1: साहब जी हजूर साहब विच आ गए
0: उरकन को कर नाश
1: औरंगजेब आदि जफरनामे के नाश करके।

0: सकल बिताई जामनी
1: साध संगत जी अज सतगुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के अवतार धारण का गुरपुरब है। आप जगत गुरु जी ने 1678 बिक्री विसाख वाली पंचमी वाले दिन अलग सवापैर के तड़के माता नानकी जी के गोद नूं भाग लाने वास्ते सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पंजवें सुपुत्र गुरता गद्दी के मालिक सतगुरु तेग बहादुर साहब का श्री अमृतसर साहब गुरु के महलों में अज अवतार होया। सब संगतों को बधाई हो गए महाराज अवतार धारण की। जगत गुरु जी अंतरजामी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के पास श्री अकाल तख्त साहब दासी के गोद विच महाराज साहब जी जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी माता गंगा जी ने कहा कि सपुत्र का महाराज साहब जादे का नाम रखो तो महाराज साहब श्री अकाल तख्त साहब आके मत्था टका के महाराज सच्चे पातशाह के चरणा के नाल ला के दासी जिस वक्त हजूर नूं मस्तक टका के गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं गोद विच लै करके उठन लगी ते महाराज साहब जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सतगुरु छेवें पातशाह दीआं दोवें श्री साहबां जो समय आपदे गल च पै रहीआं होईआं मीरी अते पीरी जी दोवें सज्जे ते खब्बे पासे उन्हां दोहां श्री साहबां दे कब्जियां नूं हथ पा लिया। महाराज साहब जी दासी छड़ाउणा चाहुंदी है आप सच्चे पातशाह छड़दे नहीं हन। उस वे महाराज साहब हस के कहने उन्होंने तो आपका नाम आप ही रखा लिया है उन्होंने तेग की बहादुरी करे जी जुलम की तेग है वह भी खुंडी पै जाएगी इन्हों एक रोम नहीं कट सकेगी इस करके इन्हों नाम तेग बहादुर अच्छी रखते हैं क्योंकि

सेवा है, इसी तरह संत महापुरुषा ने संतों के ताई पढ़ाया, फिर वाहिगुरु की आज्ञा नाल मारे के चरणों की याद से वो सेवा नु सब सुने जी। बेंत सिंह ने गहेवार गुरदयाल सिंह जी जो बोपारा है अठाई कथा कर दे रहे मगरों ना दो, इसे प्रकार होर कई सिंह पुजानी अजय सिंह जी नारायण सिंह जी उन्होंने शरीर हम सेवा कर रहे हैं, इसे प्रकार होर बेंत सिंह संतों के वरे साहे सन जो सारे इलाकों में प्रचार करते रहे, उन्होंने अरदास भी यह सेवा हिस्से आई आज्ञा की महापुरुषा के तुम ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा अपने सिरदे उत्ते संगुरां दा डंडा समझना।

900 कोस पगे ही जह हैं, कोड़न को भी मांस खले हैं, खड़े सोवे और चलते खाहे, ये खड़े खड़े सौ जाते ने घोड़िया दी काठियां ते ही और चलते चलते खांदे ने, खड़े सोवे और चलते खाहे, बैठे नाही किसे गराहे, कहन लगे किसे पिंड विच भी नहीं बैठते तू की इन्हां दा मुल्क हो जाएगा। हाड़ ना दिन पर पीवे पानी, स्याले अगर ना रखे निशानी, कहन लगे हाड़ का महीना होवे इन्हां नूं सारी दिहाड़ी पानी दी कबूत ना ना मिले, फिर भी पता नहीं कदे आसरे जकारे लाउंदे ने, इह कदे नहीं खत्म हुंदे। हाड़ ना दिन पर पीवे पानी, स्याले अगर ना रखे निशानी, स्याल का महीना होवे अग सेकनी तां इक पासे, इह अग दी निशानी भी कोल नहीं रखदे, अग दी तस्वीर भी कोल नहीं रखदे, पता नहीं रब जाने इन्हां कोल कपड़े भी नहीं हुंदे, घोड़ियां दी काठियां ती चढ़दी कला च विचरदे रहिंदे ने। स्याले अगर ना रखे निशानी, लूण किरत का स्वाद ना जाने, अज ते रब दी कृपा सानूं किन्ने पदार्थ मिलते ने, उह सिखा शुक्र करिया कर मालक दा, उन्हां वल देखो जिन्हां सिक्खी हंडाई है। लूण किरत का स्वाद ना जाने, हम दुख देवे वह सुख माने, कहन लगे ते कदे चंगा प्रशादा भी नहीं छकदे, मैं बहुती बारी इन्हां दरख्तां दे पत्ते घुट के पींदे ही वेख्या, इन्हां बेचारे नूं पता नहीं कदा आसरा है। जकरिया खाने जदों इतनी गल कही, भावे उन्हें इन्हां दा किरदार दस्या, भावे ईरखावासी दस्या, पर खुशबो ते खुशबो है ना। नादर शाह ने जदों एक गल कही, जेड़ा इतनिया डींगा मारन वाला सी, जेड़ा इतनिया गल्लां करन वाला सी नादर शाह, उन्हें अपने मत्थे ते हथ रख लिया, मत्थे ते हथ रख के बड़ी गंभीर सोच विच गलतान हो गया। जकरिया खां पुछदा भी की गल होगी, हुण नादर शाह अपना हथ थले करदा ते मूंह तां चुक के एक गल कहिंदा, नादर कादर सोच पुन, नादर ने रब नूं याद करके एक गल कही, नादर कादर सोच पुन कहो नबाबे ऐस। फिर उन्हें जकरिया खां नूं एक गल कही, नादर कादर सोच पुन कहो नबाबे ऐस, जेकर है सिंह वैस ही पाखत हो तुम जैस। जेकर एहो जी किरदार दे मालक ने ना जिवें दा तू दसना है, कुछ दिन को सिंह मारत हो तुम आप ही अपन पैर कुठार, जे सिंह एहो जे ही ने ना जिहो जे तू दसे ने, फिर तुसी अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हो, फिर कोई बड़ी गल नहीं। मारत हो तुम आप ही अपन पैर कुठार, कुछ दिन को सिंह होएंगे पूपत मुल्क मजार। कहन लगे कुछ समय तो बाद चेता रखियो, जे सिख जेड़े ने ना ओ इस दुनिया दे उत्ते राजे बन जाणगे, जे इसे तरह इन्होंने किरदार संभाल के रखिया। बदकिस्मती है, फुट ने सिखी लुट ली, फुट ने सिखी लुट ली, कहन उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं एक छोटा जिहा इशारा होर करन लगा, एक तो साड़ी कौम भावक बड़ी है, बहुत थोड़ा जा इस गल बारे ख्याल करे, मैं बेनती करा। हुण हुण अजकल हिंदुस्तान दे विच चल रहा, हुण पंजाब दे विच आरएसएस ने जां सरकारी चंद बंदियां ने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दियां फोटोआं छपियां होईआं ते चंद कुटी शर्टां कढ दित्तियां, उन्हां ला लईआं भई असीं तुहाडे ते पाबंदी चुकदे हां तुसीं ला लो, ते मेरे वर्गे बेवकूफां ने, मैं शब्द वरतन लग्या खिमा करे जी मैनू, क्योंकि असी सिक्खी उजाड़ रहे आप, उन्हां लोकां ने कढ के टी शर्टां पा लिया बेअंत, हुण उन्हां दे जिहड़े अपने बंदे ने उह उन्हें गिण लैणे ने, जिहड़े साडे वर्गिया ने पाईआं ने भावक हो के उन्हें घर चुन लैणे ने, भी ऐ घर ने जिन्हां विच सिक्खी की सोच हजे भी जिउंदी है, और उन्हां टी शर्टां ने कलियां टी शर्टां ने, कलियां टी शर्टां ने की करना तुसीं आप सोचो, उन्हें कलिया टी शर्टा ने कल सिखी उजाड़ना है। सानू नहीं पता इस गल, असि इसे तरह तुरने गड्डिया के पिछे फोटो ला लेने अपन टी शर्टा फोटो छुपा लेने, वह जालम पता लग जाने भी आ बंदे दे घर अंदर आ सोच हजे भी पनप रही है, ये सोच ही मरी नहीं हैगी, तो कल उन्होंने मारना सौखा हो जाता। फिर उस वेले दंगे करते ने, फिर उस वेले कतलेआम हुंदी है, फिर घर घर चुनिया जांदा भी इत्थे सिखां दा घर है। मैं उसे गल वल वापस परता जिहड़ी बेनती कर रहा सां।
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ

तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां विच सुभायमान सतसंगी प्यारियो करो कृपा असीसां बख्शो। अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे दिनां विच आपां विचार दी सांझ पाई सी, जस पत राय दा कतल होया उस पापी नूं नरक सधारिया, लख पत राय बुखला उठा, कानू बाण दे शंभ विच लुके सिखां दे लई उन्हें फौजां लेके घेरा पा लिया। एक पासे फौजा ने, एक पासे पहाड़ी है, उदे उत्ते प्रबंध कीता हुआ है, तीसरे पासे रावी है, चौथे पासे इस पापी ने आप अग ला दिती जंगल नूं। गुरु के सिख जिवें किवें हो सके विचों कुछ इक निकल भी गए, पर बहुते सिखां दा इत्थे शहादतां दे जाम पीते गए। करीब इतिहास एक गल आखदा है, इको दिन विच 10,000 दे नेड़े सिख जेड़ा ओ शहीद होया, कुछ 7,000 दे नेड़े उत्थे ही शहादतां दे जाम पीते, ते 3,000 पकड़ के लेके गया नखास चौंक लाहौर दे विच, इत्थे शहादतां होईयां। इस दे मगरों लखपत राय पकड़िया जांदा है, क्योंकि दोनों भरावां दा जंग हुंदा है, यहिया खान दा ते शाह निवाज दा, दोवें जकरिया खान दे पुत्तर ने। उहदे दरमियान यह लखपत राय यहिया खान भज जांदा है, उहनूं पकड़िया जांदा है, वैसे पकड़ के जेल विचों भज जांदा है, लखपत राय नूं बुरी मौतें मारिया जांदा है। यह इतिहास आपां कल रोज विचारिया सी, किवें गुरु के सिखां ने औखे वेले बेअंत उस रावी दे किनारे किनारे जदों गए, इउं प्रतीत हुंदा जिवें लहू दे अथरू रो रिहा होवे इतिहास, उदों पैरां तों तुरिया नहीं जांदा, घोड़े साथ नहीं देंदे, ते अपने कपड़े पाड़ पाड़ के उन्हां ने अपने पैरां थले लपेट लपेट के उह जिहड़ियां विच छाले हो चुके सन उबले होए रेते विचों ते उह पार जांदे ने। इत्थे तक इतिहास की लड़ी आप कल विचारी सी, अज उस तो अगे सांझ पाउणा चाहुंदा। हुण जदों यहिया खान का भी प्रभाव घट गया, क्योंकि उते भज गया, ते लखपत राय भी मारिया गया, उदों इहदा सका भरा शाह निवाज वह लाहौर का हाकम बनदा है, ते इहदा जिहड़ा दीवान है वह दीवान कौड़ा मल बनता है। दीवान कौड़ा मल खत्रियां विचों, यह भी भावें हिंदुओं विचों है, पर बहुत दाना सियाणा पुरख है, ते सिक्खी नाल इहदा स्नेह है, इसलिए इहने लखपत राय भी इहनूं पकड़ के दिता सी। इहदे वेले कुछ एक सिखां नूं सौखा साह आया, ते गुरु के सिख सन जिहड़े ओ अमृतसर साहिब की पवित्र धरती उत्ते आउण लग पे। 1746 दे विच

गुरु सवारियों जी, असीसा बख्शो, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दे विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सके। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उह चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रब आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने, माता जी

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारो।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सात संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज सचे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां। पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है। बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा, मिलके बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने। आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो सा

0: इंद्र भाव पहाड़ी राजा है, शैल तो भाव पहाड़, इंद्र तो भाव राजा, ये सारे राजा विचों इन्हां च वड्डा है। उन्हें इस तरह कहा कि तुसी सारे जिहड़े गिरंदा तो भाव गिर पहाड़, इंदा भाव फिर राजा, तुसी जिन्ने पहाड़ी राजे हो, ये मेरी गल तुसी ध्यान नाल सुनो।
1: क्यों ना भविखत बात विचारो, सिर पर शत्रु परवल विचारो।
0: तुसी आउण वाले समय की फिक्र क्यों नहीं करते हो, अपने सिर दे उत्ते इन्ना प्रबल शत्रु जो है। दसवें पातशाह वाल इशारा करके कहण लगा कि इन्ने प्रबल शत्रु आपां नूं आउण वाले समय विच मार दे।

0: सच्चे पातशाह ये महाराज ये तुहाडा ही पंथ है हुण पंथ की कटिया हो रही है भाव कट वड हो रही है पंथ हुण हार रहा है पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी ये छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए
0: महाराज केड़ी गलती होगी सातों क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे क्यों नहीं साडी मदद करदे
1: जे कर सिंह है अवगनियारे तौ आपके जगत उचारे
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सारे सिंह ने
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया भजाते ने कि महाराज नू मिलिए
1: करत पुकार सो आए कनेरी हित हेरन गुर ग्रीव ना फेरे
0: भजाते ने घोड़े आपो अपने मगर मगर महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नू अपना मुख कीता ही नहीं है कहंदे मैं नहीं रुकना हुण
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ सिंघां नू देख लो सिंघ किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन
1: कह जब रहे खरे मैं होए नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना एक भाई नौरंग सिंह सीगा उन्हें उस वक्त महाराज नू देखिया ते घोड़ा भजाया
1: तुरत तुरंग उतरियो अगवाए ऐच लकीर दई सह साए
0: भाई नौरंग सिंह ने महाराज जी तो किन्ना ही अगे घोड़ा कढ के छेती नाल उतर के लकीर खिंच दी।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदान जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना क ना खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जांदी तां माफी मंग लो। यही दस्सिया है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेहर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनों दे दल नू मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नू, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नू बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नू, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नू मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नू शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होई जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नू, दुबारा जिहड़े इधर नू मुड़े आ रहे सन पिछे नू वापस पहाड़ियां वल नू
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नू देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी दा फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई दा फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल दा फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗਤ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: आप जी ने यह कलयुग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: दोहेरा सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंथ सुख दाए।
0: ये सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार के नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है।
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए।
0: एक कौम है एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धुआं है तंबाकू उहदे तों रहत हो के जगत दे विच शोभनीक हुंदा। बाकी लोग कोई भी है भावें गंदा धुआं सारी दुनिया पींदी है।
1: पूछे परम सुप्रेम कर रहनी को बिरतंत।
0: हुण रहनी पुछदे ने सारे जाने कि परम प्रेम दे नाल पुछदे ने कि जिहड़ी खालसे दी रहनी बहनी है ये कैसी होनी चाहिदी है।
1: किसको देवे किम रहे कैसे वरतै संत।
0: ए संत स्वरूप खालसा संत सिपाही खालसा ये विच हुण साडा है कि ग्रिस्तियां दा अगे तां किसे नूं होर दान दिंदे सी पर आप जी ने कहा दान दियो इन्हीं को भलो और नाले हुण होरनां नूं दान बंद कर दिता आपने। हुण ये भी दसो कि दान किनूं दईए किवें रहीए वरतारे विच रहत मर्यादा अपनी रहनी बहनी विच किवें रहीए ते इहदे नाल नाल कैसे वरतों संत किस तरीके नाल वरतना करिए संत खालसा नाल।
1: गुरु कै सुन खालसा केस पाहुली मुकत।
0: महाराज जी ने वचन किया सुनो खालसा जी जेड़ा केस रखे हुए ने खंडे बाटे दा अमर छक के ककारां दी मर्यादा नितनेमी प्रेमी है ये तां पक्का ही मुक्त है जेड़ा कुरहितां तों बचिया होवे।
1: खंडे की सब ते भले कै चरणन की।
0: खंडे दी हुण असीं पहल बख्शिश कीती है जां पहलां चरण पहल बख्शिश कीती सी खालसे नूं इस करके सारे नालों श्रोमणी खंडे बाटे दा अमृत है।
1: युग युग में हम अवतर अपने भगतन काज।
0: युगां युगां दे विच असीं अवतार भेजदे हां जां आप आउंदे हां अवतारां नूं भी भेजदे ने हुक्म करके क्योंकि बाहर नहीं है कोई महाराज जी तों। इस करके महाराज कहिंदे जदों जदों दुनिया दे उत्ते भीड़ा बणदी है जिन्नी कि समर्था की लोड़ है नित अवतार नमित अवतार फिर अंसा अवतार अवेशा अवतार एक कला अवतार पूर्ण अवतार छे तरह के अवतार भेजते हैं। जदों देखिया कि हुण किसे तो कम नहीं बनता फिर असी खुद आप चल के सृष्टि उत्ते आउंदे हां।
1: रहनी रह तो खालसा तो मेरो सिर ताज।
0: जेड़ा रहनी दे विच रहिंदा वो मेरा खालसा है ये नहीं कि सारे अपने आप नूं खालसा लिखी जान जां समझी जान खालसा रहत मर्यादा वाला ही खालसा है वो मेरा सिर ताज है वो मेरे सिर ताज गुरसिख जिन्हां दे महाराज कहिंदे मैं दर्शन करके खुश हुंदा हां जो मर्यादा दे विच परपक हन।
1: तरै केस पाहुल बिना तरै केस पाहुल बिना पीखी मूरख सिख।
0: भावे कि अमृत जरूर छको क्योंकि अमृत छकिया रहत दा धारनी हुंदा है एवें रहत कोई नहीं रखदा क्योंकि रहत बिना जीवन पलटा नहीं खांदा इसलिए केस अमृत ते रहत जिहड़ी है ये आपस विच बहुत जरूरी है। जे हुण कोई बंदा धरे केस अमृत छके तो बिना उहनू की कहिंदे भेखी है उह मूर्ख सिख कहिंदे केस दिखा के ये दाढ़ी रख के ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ।
1: ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਸਿੱਖ।
0: ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਭਿੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਚ ਉਕਾਈ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਭਿੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
1: ਏਕ ਮਜ਼ਹਬ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਤੂਏ।
0: ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ।
1: ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ ਕੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੋਏ।
0: ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਭਰਮੇਗਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जेड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी कीनो सोच शनान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक एक ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कि नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडितों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है ये गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करेंगे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार दर्शनों करिए पवित्र गज के आ